उठो, पार्टी खत्म हो गई, चलो जो नहीं उठना है तो फिर मैं भी सोने लगा। ओके भाई। SBS South Asian।

इंतजार की वो जा रहा है कोई शबगम गुजर वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास तुम क्या गए कि रूठ गए दिन।

हुण तेरा मैनू मोह नहीं आउंदा, तैनू भी पता क्यों नहीं आउंदा। पागल कमली झली रहण दे, बस हुण मैनू कल्ली रहण दे, बस हुण मैनू कल्ली रहण दे।

0: जी सामईन, तो गीत आपने सुना और अब वक्त हो रहा है कि हम आपको ले चलें नशरियात के पहले वक्फे की जानिब। लेकिन जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू रहेगी शालीना शेख की, जो एक रज़ाकार हैं और क्या कुछ करती हैं, इस हवाले से गुफ्तगू उनसे की है शादी खान सैफ ने। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Audio.
7: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
8: 了解澳大利亚，准备好了吗
9: ？SBS Chill,
10: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
13: Far from the partisan politics.
7: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा podcast. 100 तो आहंग की दुनिया तक पहुँचने के लिए SBS Audio app download कीजिए.
9: sbs.com.au/audio.
0: SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात आप सुन रहे हैं SBS साउथ एशियन पर और मैं हूं आपकी मेज़बान वर्दा वक़ार। सामईन, नशरियात के इस हिस्से में बात करते हैं वॉलंटियर वीक की। ये हफ़्ता जो ऑस्ट्रेलिया भर में रज़ाकारों को की खिदमात को सराहने के लिए मनाया जाता है, इस हफ़्ते में हम कुछ बात करते हैं शालीना शेख की। शालीना शेख जो अदालतों में रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देकर कम्युनिटी के कमज़ोर और मुश्किल हालात से गुजरने वाले अफराद की मदद करती हैं। शालीना न सिर्फ कानूनी निज़ाम को समझने में लोगों को रहनुमाई फराहम करती हैं, बल्कि अदालत के दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल में इंसानी हमदर्दी और एतमाद का सहारा भी फराहम करती हैं। मज़ीद तफसील सुनिए शादी खान सैफ के पॉडकास्ट में।
7: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
14: ऑस्ट्रेलिया में वॉलंटियर्स वीक के मौके पर SBS उर्दू की इस खुसूसी पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं शालीना शेख से, जो अदालतों में रजाकाराना खिदमत अंजाम देकर कम्युनिटी के कमजोर और मुश्किल हालात से गुजरने वाले अफराद की मदद करती है। मैं हूं शादी खान सैफ।
15: मैं इधर 2 साल के पहले मेरे हस्बैंड के साथ आई हूं। आने के बाद एकदम अकेला महसूस कर रही थी और कहीं ना कहीं मुझे लगा बाहर निकलना है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसा निकलना है, किधर जाना है, क्योंकि इधर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो लॉ डिग्री है इधर रिकग्नाइज नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा चलो पहले वॉलंटियर जैसा शुरू करेंगे, बाद में देखेंगे। थोड़ा तो बाहर जाने का और लोगों को मिलने का, दिमाग को शांत रखने का रहेगा। अगर घर पे ही अकेली बैठी रहूंगी तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए और मेंटल हेल्थ और खराब हो जाएगा, क्योंकि आप एक नया जगह आए हो और कोई पता भी नहीं है आपको, मतलब कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। इसलिए अगर पैसों का बात अलग है, अगर आप वॉलंटरी करोगे तो नया जगह पे आप उस मतलब वो देश का रहने का तरीका सब कुछ सीख जाओगे आराम से, और एक्सपीरियंस आपको किधर से मिलेगा, कहीं वॉलंटियरिंग करने से ही मिलेगा।
14: शालीना जी, अदालतों में रजाकाराना खिदमात अंजाम देते हुए ऐसा कौन सा लम्हा था जिसे आपने जज्बाती तौर पर ज्यादा महसूस किया?
15: आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स बिकॉज इतने सारे लोग इज फ्रॉम लाइक पाकिस्तान और इंडिया श्रीलंका लाइक इस तरफ के नॉट द वेस्टर्न कंट्रीज अपने इस तरफ के कंट्रीज लोग आते हैं. उसमें ऐसा नहीं कि सबको इंग्लिश आता है सबको सिस्टम समझ में आता है. इतना बड़ा जो कोर्ट है एक बार अंदर आने से वो लोगों को एकदम थोड़े लोग तो एकदम पैनिक हो जाते हैं पैनिक अटैक आता है. और ऐसे टाइम में हम लोगों उनके साथ रह के पानी दे के पूरा समझाते हैं इट्स नॉट टू वरी एनीथिंग. लेकिन वो लोगों को हम समझाते हैं क्राइसिस अकोमोडेशन जैसा एक होता है आप जाके उधर रह सकते हो. और इवन इफ यू आर अ रेस्पोंडेंट एट कोर्ट यू आर ऑल्सो हैविंग लाइक यू हैव ऑल्सो राइट लाइक यू कैन गो टू क्राइसिस अकोमोडेशन. एंड वो लोगों के लिए भी फैसिलिटीज है आप ऐसा स्टेशन में या कहीं सोने का भी जरूरत नहीं है. और उनके लिए भी काउंसलिंग मिलता है जैसे ऑरेंज डोर से लड़कियों के लिए काउंसलिंग मिलता है ना ऐसा ही लड़कों के लिए मेंस प्रोग्राम होता है जैसे करप्शनल अगर ऐसा कुछ एंगर मैनेजमेंट ऐसा कुछ है तो उनके लिए भी सपोर्ट मिलता है. ये सब पता करने के लिए अगर एक इंसान सोचो कि अचानक कुछ इंटरवेंशन ऑर्डर पुलिस इंटरवेंशन ऑर्डर मिल गया रातों रात और उसको पता भी नहीं चलता है क्या करना है आगे जाके वो जाना है नहीं जाना है वापस घर इतने सारे डायलेमास के साथ वो कोर्ट आता है. कोर्ट आने के बाद रजिस्ट्रार के पास जाता है. रजिस्ट्रार के पास जाने से वो लोग खाली डिटेल्स कर नोट करेंगे और वो लोग बोलेंगे कि अब जाके इधर लड़की होने से ऑरेंज जोन में मतलब लड़की इन द सेंस एप्लीकेंट होने से ऑरेंज में बैठो रेस्पोंडेंट होने से पर्पल में बैठो बोलते हैं. उसके बाद वो लोगों को समझ में ही नहीं आता है क्या करना है. वो लोग खाली ही बैठे रहेंगे. बाद में थोड़ा देर के बाद वो लोग पैनिक हो जाएंगे क्यों कोई नहीं आ रहा है क्या करना है. अभी हम जाके बोलेंगे आपके लिए ड्यूटी लायर अवेलेबल होंगे आप विक्टोरिया लीगल एड में जाके पूछ सकते हो. अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो इंटरप्रेटर मांग सकते हो. ये सब चीजें वो लोगों को समझ में नहीं आता है. और एकदम देर होने से भी वो लोगों को समझ नहीं होता अगर केस बुला दिया नहीं बुला दिया हम लोगों को वेट करना है नहीं वेट करना है क्या करना है वो लोगों को समझ में ही नहीं आता है. हम लोग बोलते हैं फिर जाके चेक करके आते हैं नहीं हुआ आप वेट कर सकते हो. 1-2 लंच ब्रेक है अगर आप कुछ चाहिए तो जाके खा के आ सकते हो. अगर ऑर्डर कुछ समझ में नहीं आया तो पढ़ के सुना सकते हैं. अगर कुछ फॉर्म फिल करना है तो वो भी करते हैं.
14: शालिना जी जो लोग रजाकारना खिदमत यानी वॉलंटियरिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगी?
15: अगर आप वॉलंटियरिंग करोगे तो नया जगह पे आप उस मतलब वो देश का रहने का तरीका सब कुछ सीख जाओगे आराम से. और एक्सपीरियंस आपको किधर से मिलेगा? कहीं वॉलंटियरिंग करने से ही मिलेगा. आपका काम अच्छा लगेगा तो काम देंगे या सब कुछ अगर सोचो कि मैच कर रहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो भी है जरूर आप जॉब मिलता है. और मेरा यही परसेप्शन था इसीलिए चलो खुद को बिजी रखना है यही परसेप्शन से बाहर निकली हूँ.
14: वॉलंटियरिंग ने शालिना जी आपकी अपनी जिंदगी पर क्या असरात डाले हैं आप उस बारे में जरा हमें बताइए.
15: मेरा मानना है कि बहुत जरूरत है क्योंकि आप कोई नया जगह आते हो तो आप उस देश का जो कायदे कानून है कैसे समझोगे. आप

0: जी सामीन, तो इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है कि हम लें एक और वक्फा, लेकिन जब हम इस कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको पेश करेंगे अदाकार जुनैद खान की SBS उर्दू से खसूसी गुफ्तगू। तो हमारे साथ रहिए और यहाँ ये याद दहानी भी कराते चलें कि जुनैद खान की गुफ्तगू का मुकम्मल हिस्सा आप SBS उर्दू की वेबसाइट पर सुन सकते हैं, जबकि फेसबुक पेज पर भी मौजूद है। यहाँ उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा हम पेश कर रहे हैं, लेकिन वक्फे के बाद।
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं? हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। SBS उर्दू फेसबुक पर।
0: SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात में खुश आमदेद, मैं हूँ आपकी मेज़बान वरदा वक़ार। सामई नशरियात के इस हिस्से में कुछ बात करते हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की और फ़न व सकाफ़त की। मारूफ अदाकार जुनैद ख़ान, जिन्होंने मौसीकी के ज़रिए शोबिस की दुनिया में कदम रखा, आजकल अपने ड्रामे मुहाफ़िज की शूटिंग में मौजूद हैं। केस नंबर 9 जैसे समाजी मसाइल पर ड्रामों में किरदार अदा करने वाले जुनैद ख़ान की SBS उर्दू से खसूसी गुफ्तगू सुनिए इस पॉडकास्ट में। जबकि ये भी याद रखिए कि ये उस गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। मुकम्मल गुफ्तगू आप SBS उर्दू की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी। तो ये सुनते हैं कि जुनैद खान ने SBS उर्दू से क्या बात की है।
7: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
8: SBS उर्दू के लिए मैं हूँ कौकब जहां और सितारों की दुनिया में आज हमारे मेहमान हैं जुनैद खान।
9: शुक्रिया जुनैद खान, SBS के लिए आपने वक्त निकाला और काफ़ी दिनों से हम ये इंटरव्यू करना चाह रहे थे। पहले वाले ड्रामे के सेट पे भी आए लेकिन हम वो बात बन नहीं सकी। चलिए फाइनली वी आर डूइंग इट। कैसे हैं आप?
10: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
9: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी आप किस ड्रामे के सेट पे?
10: इस वक्त मैं हूँ मुहाफिज के सेट पे। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि शूट हो रहा है

अमृता प्रीतम की जिंदगी नु वड्डे पर्दे ते उतारण दी सब तो वड्डी कोशिश संजय लीला भंसाली ने कीती सी। गुस्ताखिया ना दे प्रोजेक्ट ते ओ लंबे समय तो कम करदे रहे ने, हालांकि फिल्म अगे नहीं वध सकी। भंसाली तो अलावा डायरेक्टर जसमीत के रीन ने भी अमृता प्रीतम अते साहिर दी कहानी ते काम शुरू किया सी। शाहरुख खान इस नु प्रोड्यूस करन वाले सन अते ओ आप ही साहिर दा किरदार भी शायद प्ले करदे। उत्ते अमृता प्रीतम दे रोल दे लई सब तो ज्यादा चर्चा प्रियंका चोपड़ा जोनस दे नां दी सी। हिंदी सिनेमा दी इह सब तो चर्चित अधूरी बायोपिक्स विचों एक बनी हुई है, जिस दा इंतजार दर्शकां नूं सालां तो है। बॉलीवुड दी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित दी अपकमिंग फिल्म मां बहन दी रिलीज डेट आखिरकार सामने आ ही गई है। ए डार्क कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म 4 जून 2026 नूं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ते रिलीज होएगी। मेकर्स ने इस दा नवा टीजर भी रिलीज कर दिता है। फिल्म मां बहन दे टीजर विच माधुरी दीक्षित तृप्ति डिमरी अते धारणा एक कंबल विच लिपटी लाश नूं कसीटदे हुए नजर आउंदियां ने। तां ही बूए ते घंटी वजदी है अते माहौल विच अचानक तणा वध जांदा है। टीजर विच सब तो मजेदार मोड़ तां आउंदा है जद माधुरी बेहद ही शांत अंदाज विच कहंदी है कि चाह बनावा। फिल्म विच कॉमेडी दे नाल नाल सस्पेंस अते इमोशनल ड्रामा भी वेखण नूं मिलेगा। ए फिल्म ओटीटी दी सब तो मजेदार अते वखरी कॉमेडी फिल्मां विचों एक साबित हो सकती है। अश्विन महाराज प्रेजेंट नवा रोमांटिक गाना आजा सजना मेरे ख्वाबों के अंगना रिलीज हो गया है। गाना आजा सजना मेरे ख्वाबों के अंगना प्यार अपनापन अते खूबसूरत एहसासा नाल भरिया एक बहुत ही वधिया संगीत सफर लेके आया है। गीत नु अपनी आवाज दिती है शंकर दास ने, जबकि संगीत अते बोल सतीश त्रिपाठी ने तैयार किते ने। इस गाने दी शूटिंग बाली इंडोनेशिया विच कीती गई है, जिसने इस दे विजुअल्स नु होर भी

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 20 मई 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के बुरुंजुरी और हुईहुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में हमें सुन रहे सभी श्रोताओं को SBS हिंदी का नमस्कार. आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो शो जहां हर दिन मिलता है खबरों का सिलसिला और संगीत का शानदार तड़का. मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे में हम आपके लिए लेकर आएंगे खूब सारी जानकारी, कहानियां और कुछ बेहद दिलचस्प चर्चाएं. आज के शो में शुरुआत करेंगे एक बेहद जरूरी जानकारी के साथ. ऑस्ट्रेलिया में टैक्स सीजन की शुरुआत होने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए SBS हिंदी आपके लिए लेकर आया है एक खास सीरीज, मनी मैटर्स. इस सीरीज में आसान भाषा में समझाया जाएगा कि टैक्स, बचत, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और पैसों से जुड़े फैसले आखिर किस तरह से लिए जाएं. आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे टैक्स की बुनियादी बातों को लेकर. और आपको बता दूं कि हर बुधवार को इस सीरीज का एक एपिसोड हम आप तक लेकर आएंगे और आप हमें ज़रूर बताएं 04397997667 पर कि SBS हिंदी की ये नई पहल आपको कैसी लग रही है. इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो ऑस्ट्रेलियाई समाज की पहचान माना जाता है, वॉलंटियरिंग यानी स्वयं सेवा. देश भर में इस समय मनाया जा रहा है नेशनल वॉलंटियर्स वीक 2026. कई लोग सालों से अपने समुदाय, पड़ोस और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं और इसी पर एक खास रिपोर्ट हम आज तक लेकर आएंगे. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन सहयोगियों को जल्द ही लगभग $1.8 बिलियन के मुआवजे फंड तक उनको पहुंचाया जाएगा जो मानते हैं कि उनके खिलाफ गलत तरीके से जांच और कानूनी कार्रवाई की गई है. क्या है ये पूरा मामला, आज के कार्यक्रम में आपको बताऊंगी. लेकिन इन सभी चर्चाओं से पहले वक्त है आज के मज़ेदार से सवाल का. अब मैं आपको एक गाने की धुन सुनाने जा रही हूँ और आपको मुझे बताना है कि ये जो गाना है ये कौन सा है. तो ध्यान से सुनिएगा ये धुन.

0: तो दोस्तों नंबर है 04397997667 और जल्दी से अपने मैसेजेस मुझ तक भेज दें। देखना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो ये धुन पहचान पाते हैं। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और हमारी बातचीत आगे चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है।
1: प्रस्तुत है 20 मई 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कांगो में प्रतिनिधि ने कहा है कि इबोला के एक दुर्लभ उपप्रकार से संक्रमित लोगों को अलग थलग रखना यानी आइसोलेशन इस बीमारी के प्रसार को रोकने में बेहद अहम भूमिका निभा सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती मौत के बाद वायरस कई हफ्तों तक बिना पहचान के फैलता रहा, क्योंकि शुरुआत में अधिक सामान्य प्रकार के इबोला की जांच की जा रही थी जिसके नतीजे नेगेटिव आए थे। इसी बीच अमेरिका ने इबोला प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य स्क्रीनिंग को कड़ा कर दिया है। साथ ही उन गैर अमरीकी पासपोर्ट धारकों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं जिन्होंने पिछले 21 दिनों में युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या दक्षिण सूडान की यात्रा की हो। वहीं ऑस्ट्रेलिया के फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा है कि देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में फैल रहा डिप्थीरिया का प्रकोप कई वर्षों में सबसे गंभीर नजर आ रहा है। इस विषय में सरकार जल्द ही एक सहायता पैकेज तैयार करेगी जिसमें टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती शामिल होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल एनवॉय आफताब मलिक ने सरकार से अपील की है कि वे इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए उनकी सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई करें। ये अपील अमेरिका के सैन डिएगो स्थित एक मस्जिद में हुई गोलीबारी के बाद आई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में हमलावर एक किशोर था जिसने कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के प्रति नफरत व्यक्त की थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में नाकाबंदी जारी रखे हुए है और उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें सैन्य कार्रवाई दिखाई गई है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है कि वे इस रणनीतिक जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए कोई समझौता करें। उन्होंने पहले कहा था कि समझौता करीब है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। इजरायली सेना ने गाजा पहुंचने की कोशिश कर रहे 50 सहायता जहाजों को रोक दिया है। सामने आए एक वीडियो में सैनिकों को कार्यकर्ताओं को हाथ ऊपर करने का आदेश देते हुए देखा गया। आयोजकों के अनुसार 400 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जिनमें 76 तुर्की नागरिक भी शामिल हैं। एक स्वतंत्र अर्थशास्त्री ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे उस दावे को गलत बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि छोटे व्यवसायों पर 47% टैक्स लगेगा। AI जनरेटेड मीम्स में प्रधानमंत्री को गलत तरीके से बिजनेस मालिक के रूप में दिखाया गया है और अर्थशास्त्री सॉल एल्सेक ने कहा है कि ये दावा पूरी तरह से झूठा है और 47% टैक्स कर केवल 1.9 लाख डॉलर से अधिक आय पर लागू होती है। वहीं एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य और क्षेत्रीय सरकारों की जोनिंग नीतियों के कारण संपत्ति मालिकों को अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। रिसर्च संस्था प्रॉस्पर ऑस्ट्रेलिया के अनुसार ऊंची और घनी आवासीय इमारतों की अनुमति देने से जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इसका पूरा लाभ जनता तक वापस नहीं पहुंच पा रहा है। बात करें भारत की तो 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने डिनर के दौरान वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने मुलाकात की खास तस्वीरें साझा करते हुए भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन सहयोगियों को जल्द ही लगभग 1.8 बिलियन डॉलर के मुआवजे फंड तक पहुंच मिल सकती है जो मानते हैं कि उनके खिलाफ गलत तरीके से जांच और कानूनी कार्रवाई की गई थी। क्या है ये पूरा मामला, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और आज हम बात करेंगे अमरीका की राजनीति में उठे एक बड़े विवाद की। जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों से जुड़ा एक नया मुआवजा फंड चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों का दावा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान उन्हें राजनीतिक कारणों से गलत तरीके से जांच और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
3: And the president said he will donate the proceeds to charity. You may have missed that.
4: So no one at all has discussed this to you whatsoever.
3: Nope.
2: इसी बीच अमेरिकी न्याय विभाग ने करीब 1.8 बिलियन डॉलर के एक मुआवजा फंड की घोषणा की है, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में तीखी बहस शुरू हो गई है। दरअसल ये मामला ट्रंप और अमेरिकी टैक्स एजेंसी IRS के बीच चल रहे एक बड़े मुकदमे से जुड़ा हुआ है। ट्रंप, उनके बेटों और उनकी कंपनी ने आरोप लगाया था कि IRS के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर चार्ल्स लिटिल जॉन ने उनकी टैक्स जानकारी मीडिया में लीक की और एजेंसी इसे रोकने में नाकाम रही। इस मामले की शुरुआत में कहा गया था कि अगर ट्रंप ये मामला जीतते हैं तो मिलने वाली राशि चैरिटी में दे दी जाएगी, लेकिन अब कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने घोषणा की है कि ट्रंप अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं और इसके बदले में एक समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत एक एंटी वेपनाइजेशन फंड बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य उन लोगों को मुआवजा देना है जो मानते हैं कि उन्हें सरकार ने राजनीतिक, वैचारिक या व्यक्तिगत कारणों से गलत तरीके से निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
5: This is reimbursing people that were horribly treated. It's anti-weaponization. They've been weaponized. They've been in some cases imprisoned wrongly. They paid legal fees that they didn't have. They've gone bankrupt. Their lives have been destroyed. And they turn out to be right. I mean, it was a terrible period of time in the history of our country.
2: ट्रंप ने ये भी कहा है कि कई लोगों को गलत तरीके से जेल भेजा गया, भारी कानूनी खर्च उठाने पड़े और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि कैपिटल हिल में डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस सदस्य जेमी रॉस्किन ने इसे असंवैधानिक और भ्रष्ट बताते हुए कहा,
6: They gave $1.25 million to his disgraced former national security advisor Michael Flynn. They gave $1.25 million to Carter Page as a dress rehearsal for this big $1.7 billion announcement. Those guys both went to court and lost in court. The Department of Justice already beat them in court, and now they want to turn around and give them money for claims that have already collapsed legally. That is a political slush fund.
2: साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ ऐसे लोगों को भी मुआवजा दिया जा सकता है जिनके मामले अदालत में पहले ही खारिज हो चुके हैं। जेमी रॉस्किन ने ट्रंप प्रशासन पर फेडरल धन के गलत इस्तेमाल के और भी आरोप लगाए हैं और कहा कि ये फैसला कानूनी और नैतिक दोनों स्तर पर सवाल खड़े करता है।
6: Another one is the Board of Peace. He took $1.5 billion out of the State Department budget, which was in there basically for disaster relief around the world. They took that out, put it into the Board of Peace. Then he got $1 billion from Qatar, he got $1 billion from the United Arab Emirates, he got $1 billion from Saudi Arabia and some other countries. And he is the chairman for life of the Board of Peace. And there's no rules. It wasn't set up by Congress. It's not regulated.
2: वहीं Citizen for Responsibility and Ethics in Washington नाम की निगरानी समूह ने इस कदम को अमेरिकी इतिहास के सबसे भ्रष्ट फैसलों में से एक बताया है। साथ ही बाइडेन प्रशासन के दौरान अटॉर्नी जनरल रहे मेरिक गार्लैंड ने पहले से ही राजनीतिक पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, गौरतलब है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान ट्रंप के कई करीबी सहयोगियों की जाँच हुई थी। इनमें स्टीव बैनन और पीटर नवारो जैसे नाम भी शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग मामलों में सजा भी मिली। हालांकि अभी तक न्याय विभाग ने ये साफ नहीं किया है कि इस फंड का लाभ किन लोगों को मिलेगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या 6 जनवरी 2021 के कैपिटल दंगों में शामिल लोगों को भी मुआवजा मिल सकता है, तो उन्होंने कहा,
5: And the negotiation.
2: अब इस मामले को लेकर लगभग 100 सांसद अदालत में कानूनी चुनौती की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन समेत कई डेमोक्रेट सांसदों ने एक नया विधेयक भी पेश किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सरकारी समझौता राशि लेने से रोकना है। ऐसे में आने वाले समय में ये मामला अमरीकी राजनीति, न्याय व्यवस्था और सरकारी जवाबदेही तीनों पर कड़ी बहस को जन्म दे सकता है। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
0: तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को अभी हमने सुना जिसमें बात हुई कि कैसे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सहयोगियों को जल्द ही लगभग $1.8 बिलियन के मुआवजे फंड तक पहुंच मिल सकती है। और इस पूरे मामले को हम आप तक सरल भाषा में लेकर आए थे। चलिए आपको बता दूं कि आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा है जहां मैं जानना चाहती हूँ कि एक धुन आपको मैंने सुनाई है और आपसे पूछा है कि क्या आप इस धुन को पहचान पा रहे हैं। फिर से एक बार ये ऑडियो आपके लिए चला रही हूँ और नंबर है 0439799767। ध्यान से सुनिए।

0: तो दोस्तों आपके कई सारे मैसेजेस मुझ तक आ रहे हैं, लेकिन सही जवाब बहुत जल्द बताऊंगी। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद हम सुनेंगे भारत की खबरें। तब तक आप बने रहें SBS हिंदी के साथ।
1: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: तो दोस्तों ब्रेक के बाद SBS हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो ब्रेक से पहले हमने नज़र डाली आज की खबरों पर और साथ ही एक विशेष रिपोर्ट भी हम आप तक लेकर आए थे। आपको बता दूं कि वक्त हो रहा है 5:17 और वैसे तो मेरा कोई भी कार्यक्रम आप मिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आज के कार्यक्रम में आप मेरे साथ ज़रा देरी से जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि आज मैंने आपसे पूछा है एक बहुत ही मज़ेदार सवाल, जिसके जवाब मेरे पास धड़ा धड़ा रहे हैं और जल्द आपको बताऊंगी कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। लेकिन पहले बता दूं कुछ लोगों के जो गलत जवाब मेरे पास आए हैं। कुमार जी ने लिखा है ये जो गाना है ये है लेके पहला पहला प्यार, और साथ ही किसी ने लिखा है मुकद्दर का सिकंदर। तो ये जो दो जवाब हैं ये गलत जवाब हैं। आप मुझे 04397997667 पर सही जवाब बताएं और बताएं कि ये जो धुन है ये कौन से गाने की है।

0: तो दोस्तों जल्दी से अपने जवाब मुझे 04397997667 पर भेज दीजिए। और आपको बता दूं कि यदि हमारा कोई भी कार्यक्रम या अंश आपसे छूट गया हो, आपने मिस कर दिया हो, तो SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर जाकर ये सभी अंश और कार्यक्रम आप फिर से सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो चला है जानने का कि भारत में क्या कुछ चल रहा है।
1: भारत और नॉर्डिक देश अपने संबंधों को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। आपसी संबंधों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग को लेकर सहमति बनी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में आपसी साझेदारी को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। मंगलवार को सम्मेलन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेस बढ़ाएंगे। हम आर्कटिक और पोलर रिसर्च में अपना सहयोग और गहरा करेंगे और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर सुनिश्चित करेंगे।
1: वैश्विक मामलों पर भी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में कहते हैं,
2: ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है।
1: इस शिखर सम्मेलन में नॉर्वे के अलावा डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड भी शामिल हुआ। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ऑर्पो ने इस अवसर पर कहा,
3: There is a great momentum in our relations. Both President Stubb and I had a pleasure to visit India earlier this year. Earlier this spring, we had established a strategic partnership in digitalization and sustainability. Finland is committed to bring this partnership into concrete actions. These interactions witness the importance and potential that we attach to collaboration with India. With the India-EU Free Trade Agreement, we set the aim of at least doubling the value of trade between India and Finland by 2030.
1: प्रधानमंत्री मोदी आज इटली में हैं। भारत इटली मित्रता को और मजबूत करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक होने वाली है। और अब चर्चा घरेलू मामलों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलियों के खात्मे की घोषणा की है। माओवादी नक्सली हिंसा से प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर से उन्होंने कहा,
4: हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति अस्वस्थता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सबके लिए एक बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया।
1: नक्सलवाद को विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए अमित शाह कहते हैं,
4: उसके पक्षधर लोग, बुद्धिजीवी, ये बता रहे थे कि नक्सलवाद इसलिए अस्तित्व में आया है कि कुछ क्षेत्र में विकास नहीं पहुंचा है, जबकि ये वास्तविकता नहीं थी। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो विकास न पहुंचने का कारण ही नक्सलवाद था। देश में कई सारे हिस्से ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी ज्यादा पिछड़े हुए थे, मगर वहां नक्सलवाद नहीं हुआ और वो क्षेत्र धीरे धीरे सहन सहन आगे बढ़ गए। मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित रहे वो झस के तस रहे।
1: कांग्रेस पार्टी समेत समूचे विपक्ष ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर सरकार की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संकट के चलते देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है, विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आर्थिक तूफान आने की चेतावनी दी है।
5: जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। और चोट किसको लगेगी? अंबानी अदानी को नहीं लगेगी, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे, उनके महलों के चारों ओर सिक्योरिटी होगी। चोट लगेगी हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के मजदूर को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो रोजगार देती है उनको।
1: राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह आने वाले संकट को नजरअंदाज कर रही है।
5: अब हम कह रहे हैं, महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी। और वो कहते हैं राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। और हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो कभी हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं।
1: और अब चर्चा मौसम की। इन दिनों उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, कई शहरों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है तो कुछ जगहों पर पारा 45 डिग्री को पार कर रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से शुष्क और गर्म हवाओं का प्रभाव काफी बढ़ गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 48 डिग्री को पार कर गया। भयंकर गर्मी का असर जनजीवन पर पड़ रहा है, लू लगने से लोग बीमार हो रहे हैं और कुछ जगहों पर मौत की भी खबरें हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
0: तो दोस्तों, ये आपने सुनी खबरें भारत से, और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि लौटकर आपको सुनाऊंगी SBS हिंदी की खास पेशकश, SBS हिंदी की नई सीरीज मनी मैटर्स।
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
12: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
13: Hey America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/freeforever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. और इसी के साथ आपको बता दूं कि आज आपके खूब सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं और आप में से काफ़ी लोगों ने आज के सवाल का सही जवाब बता दिया है. लेकिन सही जवाब क्या है ये मैं जल्द बताऊंगी, लेकिन एक आखिरी मौका आप लोगों को देती हूँ ये गाने को गेस करने का. सुनिए ये धुन और बताएं मुझे 0439799767 पर कि ये कौन सा गाना है.

0: तो जल्दी से अपने जवाब मुझ तक भेज दें, और जब तक आपके संदेश मुझ तक आ रहे हैं, आपको बता दूं कि ये आने वाला अंश आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये है SBS हिंदी की खास पेशकश जिसे हम मनी मैटर्स के नाम से आप तक लेकर आए हैं। तो टैक्स सीजन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए हम एक खास सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं मनी मैटर्स, जहां एक विशेषज्ञ सीधी साफ भाषा में फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, टैक्स से जुड़े विषयों की जानकारी देंगे। तो आज इसका पहला एपिसोड आइए सुनते हैं, जिसमें हम बात करेंगे टैक्स बेसिक्स की। आपको बता दूं कि इस खास सीरीज को आप तक लेकर आ रही हैं SBS हिंदी से स्वाति शर्मा।
1: आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आपका स्वागत है SBS हिंदी की एक नई सीरीज मनी मैटर्स में। इस सीरीज के आने वाले कुछ भागों में हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। चूंकि टैक्स सीजन नज़दीक है, 30 जून आते आते हम सभी के मन में एक ही सवाल रहता है, टैक्स रिटर्न सही से भर पाएंगे या नहीं, कोई डिडक्शन छूट तो नहीं रहा या कोई गलती तो नहीं कर रहे। इसी वजह से हम ये सीरीज लेकर आए हैं, जहां आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम उन टैक्स सवालों पर बात करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं पर जिनके जवाब शायद आसानी से मिल नहीं पाते। हर एपिसोड में एक एक्सपर्ट होंगे जो इन मुद्दों को आसान भाषा में समझाएंगे। तो आज है इस सीरीज का पहला एपिसोड और विषय है ऑस्ट्रेलिया में नए आए लोगों के लिए टैक्स सिस्टम की बेसिक्स। अगर आप हाल ही में ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो टैक्स रिटर्न एक नई चीज़ लग सकती है। टैक्स रिटर्न का मतलब है साल में एक बार आपको ATO यानी ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस को बताना है कि आपने कितनी कमाई की, कितना टैक्स पहले ही कट चुका है और कितना पैसा आपको वापस मिलेगा या कितना और भरना है। ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है और अगर आप खुद अपना रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न भरने की आखिरी तारीख होती है 31 अक्टूबर। इसके लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, एक TFN यानी टैक्स फाइल नंबर, एक माई गव अकाउंट जो ATO से लिंक्ड हो और अपने एम्प्लॉयर से मिला इनकम स्टेटमेंट। अब इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं पुनीत सिंह, जो एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं और कई वर्षों से लोगों को टैक्स और वित्तीय मामलों में मदद करते आ रहे हैं। कुछ कॉमन पर ज़रूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज पुनीत हमारे साथ हैं। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS हिंदी में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू।
1: जी पुनीत, एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो लोगों को कंफ्यूज करती है, वो है टैक्स रेजिडेंट। आसान भाषा में बताइए कि टैक्स रेजिडेंट का क्या मतलब होता है। अगर कोई इंसान सिटीजन या PR ना हो तो भी वो टैक्स कारणों के लिए रेजिडेंट कैसे हो सकता है?
2: स्वाति जी, जब एक इमिग्रेंट इस कंट्री में आता है एंड वो अपना टैक्स अदा करता है तो नॉर्मली उनका एक मिथ रहता है कि दे आर नॉट टैक्स रेजिडेंट फॉर टैक्सेशन पर्पसेस, क्योंकि जब वो अपना टैक्स रिटर्न लॉन्च करवाते हैं वो टैक्स रेजिडेंट होते हैं टैक्स पर्पसेस के लिए। वो परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है बट टैक्स पर्पसेस के लिए वो टैक्स रेजिडेंट है।
1: जी पुनीत, दूसरा सवाल है मेरा अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों से जुड़ा। हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अकेले भारत से ही ऑस्ट्रेलिया में 1,40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। उनके टैक्स ऑब्लिगेशंस कैसे अलग होते हैं और क्या वो भी टैक्स रेजिडेंट्स माने जाते हैं? और उनके लिए मेडिकल लेवी के बारे में भी ज़रूर बताइए।
2: सो स्वाति जी, ऐसा है ना कि चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट है, चाहे वो टैक्स रेजिडेंट है, चाहे वो टेम्पररी रेजिडेंट है, ऑल आर इक्वल, सभी को बराबर एक जैसा टैक्स देना है, चाहे वो TFN पे है, चाहे वो ABN पे है, चाहे वो GST रजिस्टर्ड है। मेडिकेयर लेवाई की जो बात कर रहे हो आप, उस वो जो टेम्पररी रेजिडेंट होता है क्योंकि वो मेडिकेयर को यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो जो 2% डिडक्ट होता है दे कैन रीइंबर्स दैट बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग दैट फैसिलिटी। मेडिकेयर लेवाई इसलिए वो काटा जाता है बिकॉज उनके पास मेडिकेयर की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास अपना प्राइवेट इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इसीलिए जब वो टैक्स रिटर्न लॉन्च करते हैं दे कैन क्लेम दैट बैक बाय फिलिंग वन फॉर्म ऑनलाइन थ्रू ATO, थ्रू MyGov एंड दे कैन डू दैट एज वेल।
1: जी तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग अपना पहला टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और नंबर चाहिए होते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं?
2: जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका TFN नंबर, अगर तो वो TFN पे जॉब कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी वाया सिंगल टच पेरोल रिकॉर्ड ATO को भेज दिया हुआ है। अगर वो EBN पे काम कर रहे हैं तो उनको अपने टैक्स अकाउंटेंट जो कि रजिस्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, उनको अपना बैंक डिटेल्स जो उनकी ट्रांजेक्शन समरी है वो उनको प्रोवाइड करनी होगी। देन अकाउंटेंट कैलकुलेट करके बताएगा कि दिस इज़ योर इनकम। जो TFN की इनकम होती है वो ऑटोमेटिकली ATO के पास चले जाती है, बैंक के जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली ATO के पास चले जाते हैं थ्रू STP। सो प्रिटी मच अगर वो EBN पे काम कर रहे हैं तभी उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है, अदरवाइज सारी इन्फॉर्मेशन ATO के पास ऑलरेडी होती है। स्वाति जी, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि बहुत मिथ होता है कि जब हम पहला टैक्स रिफंड करते हैं, पहला टैक्स रिटर्न करते हैं तो मेरे को पूरा टैक्स रिफंड वापस आ जाता है। दैट इज़ अ मिथ एक्चुअली, बिकॉज होता क्या, इसके पीछे कारण है। एक स्टूडेंट जब लेट्स से फरवरी में आता है तो वो आते आते एक आधा महीना उसको लग जाता है जॉब ढूंढने में, तो लेट्स से वो अगर मार्च अप्रैल में जॉब कर रहा है तो आई थिंक उसने 2-3 महीने ही जॉब की है, दैट मीन्स उसका थ्रेशहोल्ड 18,000 से नीचे ही है। तो जब वो टैक्स रिटर्न करवाने जाता है तो उसको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाता है। तो इसी कारण ये मिथ बना हुआ है कि हमारा जो पहला टैक्स रिटर्न होता है वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है, बट जबकि ऐसा नहीं होता, जो थ्रेशहोल्ड होता है उसी के अकॉर्डिंगली किया जाता है।
1: जी, एक आखिरी सवाल कि जो लोग पहले टैक्स रिटर्न भर चुके हैं पर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी कॉमन गलती है जिससे लोग अक्सर दोहरा देते हैं?
2: जी, सबसे पहले जो उनके क्लेम्स होते हैं वो उनको ध्यान रखने होते हैं कि थ्रू आउट द ईयर उनको रिकॉर्ड कीपिंग रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आपको इनवॉइस चाहिए, इनवॉइस डेफिनेटली चाहिए होती है, बट जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो, दीज आर द आवर्स कि मैंने काम किया हुआ है, तो ATO वो सफिशिएंट कर लेता है। बट अगर आप दूसरे मेथड्स के थ्रू जाते हो, अगर आप फिक्स रेट मेथड या वर्क फ्रॉम होम के जो मेथड है उसके तहत नहीं जाते, देन आपको डेफिनेटली रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है, रिसिप्ट रखनी है, ताकि जब टैक्स रिटर्न का टाइम पास में आए वो आप चीज़ें क्लेम कर सकते हो। देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन क्लेम, जो कि एक माइग्रेंट नहीं समझ पाता, उसको नहीं पता होता, उसको लगता है कि उसका जो एम्प्लॉयर है वही हैंडल करेगा, बट ऐसा नहीं है।
1: जी पनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी साफ जानकारी देने के लिए। तो ये था आज का एपिसोड ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद पहले टैक्स रिटर्न की बेसिक्स पर। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन डिडक्शंस की जो माइग्रेंट्स अक्सर क्लेम करना भूल जाते हैं, यानी वो पैसा जो आप वापस पा सकते हैं पर लेते नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। SBS हिंदी के लिए इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद। SBS हिंदी की नई श्रृंखला
3: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
3: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है, SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इस अंश को आप तक लेकर आई थी SBS हिंदी से स्वाति शर्मा, और आप हमें 04397997667 पर ज़रूर बताएं कि SBS हिंदी की ये खास प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि यदि आप ये एपिसोड दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर ये अंश फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस अंश के माध्यम से हमारी कोशिश रही है कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम आप तक सरल भाषा में लेकर आएं। तो यदि आप हमें बताएंगे कि आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी है तो उसी हिसाब से हम आगे भी हर वेंसडे यानी हर बुधवार को आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सोच रही हूँ आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ, और आपके खूब सारे मैसेजेस जो हैं वो मुझ तक आ रहे हैं, और जल्द बताऊँगी कि किन किन लोगों ने आज के सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक दिया है।

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
4: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें, किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। आपको बता दूं कि आज मैंने आपसे एक गाने की धुन चलाकर पूछा था कि आप इस गाने का नाम मुझे बताएं। खूब सारे संदेश आपके मुझ तक आ गए हैं, जो कि जल्द मैं पढ़ूंगी और बताऊंगी कि किसने इस गाने का जो नाम है वो बिल्कुल सही बताया था। लेकिन उससे पहले ये गाना आपके लिए चला देती हूँ।
8: ऑस्ट्रेलिया भर में लाखों स्वयं सेवक इस सप्ताह वार्षिक नेशनल वॉलंटियर वीक मना रहे हैं और अपने समुदायों के लिए योगदान देने के सुख को साझा कर रहे हैं। इस वर्ष नेशनल वॉलंटियर वीक की थीम है योर ईयर टू वॉलंटियर, यानी स्वयं सेवा के लिए आपका वर्ष। ये थीम स्वयं सेवकों के योगदान का सम्मान करती है और अधिक लोगों से स्वयं सेवा यानी वॉलंटियरिंग से जुड़ने की अपील करती है। नमस्कार, मैं हूँ SBS हिंदी से वृषाली जैन और अब आइए चर्चा करते हैं नेशनल वॉलंटियर वीक की। मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों के अलावा गैरी पाटनी पिछले 3 दशकों से सिडनी में स्वयं सेवा से जुड़े हैं। उन्होंने बहुसांस्कृतिक सामुदायिक उत्सवों में सहयोग करने से लेकर नेशनल पार्क्स में पर्यावरण संरक्षण तक कई क्षेत्रों में योगदान दिया है। रिटायरमेंट के बाद जब उनके माता पिता भारत से ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे, तब गैरी पाटनी ने महसूस किया कि उनकी माँ अकेलेपन का सामना कर रही थी और अपनी उम्र के लोगों के बीच साथ और अपनापन तलाश रही थी।
9: We've got a practical problem here. We in Australia for the elderly do not have a more economical option. They also provide them social connections.
8: अपनी माँ से प्रेरित होकर उन्होंने अकेले रह रहे बुजुर्गों को साथ रहने के लिए रूममेट से जोड़ने की एक नई पहल शुरू की। सोशल मीडिया और सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से गैरी पाटनी ने कई सफल होम शेयरिंग व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। इनमें 80 वर्ष की एक विधवा महिला को 60 वर्ष की एक कार्यरत नर्स के साथ रहने के लिए जोड़ना भी शामिल था।
9: I do have other volunteers like myself willing to help make sure the home function as a home.
8: उनका ये कार्यक्रम अब ऑस्ट्रेलिया के व्यापक स्वयंसेवी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है, जिसका इस सप्ताह नेशनल वॉलंटियरिंग वीक के दौरान उत्सव मनाया जा रहा है। Your ear to

0: वॉलंटियर थीम के साथ आयोजित ये वार्षिक अभियान सफल स्वयंसेवी पहलों की कहानियां साझा कर ऑस्ट्रेलियाई लोगों को स्वयं सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। अक्टूबर 2025 में विक्टोरियन मल्टीकल्चरल अवार्ड्स के दौरान SBS हिंदी के नबील हसन ने शिरकत की, जहां उनकी बातचीत हुई वॉलंटियर ऑफ द ईयर फाइनलिस्ट मोहम्मद अनस के साथ।
1: इस कार्यक्रम में एक कैटेगरी वॉलंटियर ऑफ द ईयर की भी थी। फाइनलिस्ट बने नास ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में वॉलंटियरिंग के कई अवसर मिलते हैं और ये करियर बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं।
2: वॉलंटियरिंग एक ऐसी चीज है जो आप इंसान में तब्दीली लाती है, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि बातचीत करना लोगों से, लोगों के साथ कैसे रहना है, और ये चीजें एम्प्लॉयर्स है देखते हैं, जो फ्यूचर एम्प्लॉयज हैं उनके ये देखना चाहते हैं कि वो है। बहुत बड़ी फील्ड है वॉलंटियरिंग भी। समझो आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी है, आप उसमें जा सकते हो। अर्बन प्लानिंग, वहाँ की वॉलंटियरिंग होती है। ज़ीरो वेस्ट, वहाँ की भी वॉलंटियरिंग होती है। टेडेक्स बोल करके इवेंट होता है, वहाँ पे वॉलंटियरिंग होती है। और जनरल वॉलंटियरिंग भी होती है, जहाँ पे आप किसी की खिदमत कर सके। आपको ऐसे मुकाम पे रखे जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको बनानी पड़ती है। और अपॉर्चुनिटी कैसे बनाए, आप कदम आगे ले, मालूमात करें।
0: SBS हिंदी से हुई अपनी पुरानी बातचीत में NSW स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज के साथ वॉलंटियर करने वाले विनय कुमार बताते हैं कि उन्होंने वॉलंटियरिंग शुरू कैसे की और वे आखिर वॉलंटियरिंग क्यों करते हैं।
3: मैं ब्लू माउंटेन्स में बच्चों के साथ बुश वॉकिंग कर रहा था। उन दिनों आई थिंक इटालियन टूरिस्ट वहाँ पे खोया हुआ था और वहाँ पे उसको बहुत से SCS वॉलंटियर ढूंढ रहे थे। उस समय कुछ लोगों से मिला, अच्छा लगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। समय तो कोई इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं थी, सन 2000 में उस समय नहीं मालूम था कि SCS जैसी कोई संस्था है, क्योंकि हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। घर में सब कुछ खुद करते थे। बट जब उनको देख के लगा कि मैं लोगों को ढूंढने में, बुश वॉकिंग में उनकी हर मदद कर सकता हूँ, तो मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया। मैंने कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि वो उनका कितना बड़ा स्कोप है, वो क्या क्या करते हैं, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जाने के बाद पहली बार कुछ ऐसा किया जिसमें आप केवल पैसे के लिए नहीं कर रहे हो। जैसे जैसे हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि जब आप किसी की मदद करते हो तो जो आपको खुशी मिलती है वो आराम से बताई नहीं जा सकती। 20 साल से कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, तनाव रहता है, भाग दौड़ बहुत रहती है। बच्चे छोटे थे पहले, उनके पीछे पीछे भाग के समय बहुत निकला, पर अभी जब थोड़ा सा समय जिंदगी को छोड़कर जब वॉलंटियर में लगाने के बाद जो खुशी मिलती है, जो आपको सुकून मिलता है, वो अलग नहीं बताया जा सकता। तो वही चीज है जो आपको वहाँ पे बना के रखती है।
0: बीते कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के दबाव के कारण स्वयं सेवकों की संख्या में गिरावट देखी गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोग फिर से वॉलंटियरिंग की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस काम से सुख और संतोष मिल रहा है। वॉलंटियरिंग ऑस्ट्रेलिया के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलिया के 90 लाख से अधिक लोगों ने स्वयंसेवी कार्यों में हर साल कुल 60 करोड़ घंटों से अधिक का योगदान दिया। इसके मुकाबले वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने स्वयंसेवी कार्यों में लगभग 49 करोड़ घंटे प्रतिवर्ष दिए थे। Mark Pearce, Volunteering Australia के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
4: Despite all of the constraints, despite all of those things that will prevent us from volunteering and involving ourselves in community, that volunteer numbers, the number of people volunteering, has been really robust. It's held up.
0: Volunteering Australia से Mark Pearce भी समुदाय को सेवा में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
5: Go on to platforms such as Go Volunteer or Seek Volunteer, and you'll find a raft of opportunities on there in your area and within your areas of interest. Additionally, getting in contact with your state and territory volunteering peak bodies, give them a call, and they'll be able to provide you with lots and lots of opportunities and steps that you can take to get involved in volunteering in ways that make sense to you.
0: इस रिपोर्ट को आपके लिए प्रस्तुत किया SBS न्यूज से जेनेवीव लैमंड और विंग क्वांग, और SBS हिंदी से नबील हसन और रुशारी जैन ने।
6: तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमने सुना कि ऑस्ट्रेलिया इस समय नेशनल वॉलंटियर्स वीक मना रहा है और समुदाय के कुछ लोग दशकों से जो ऑस्ट्रेलिया में स्वयं सेवा कर रहे हैं उनका इस पर क्या कहना है। उम्मीद करती हूँ ये अंश आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आज मैंने आपको एक धुन सुनाई थी और आपसे पूछा था कि ये कौन सा गाना है, तो आइए सुनते हैं।

तो दोस्तों मुझे खूब सारे संदेश आए हैं और आपको बता देती हूँ कि गाने का नाम है सलामे इश्क मेरी जान। और अरुण अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा तेजस जी का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। साथ ही हार्दिक खेतानी जी ने सही जवाब दिया है। क्लाइड से संदीप जी का जवाब बिल्कुल सही है। रिचा जी ने भी हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा हमें कुछ और संदेश आए हैं जिन पे नाम नहीं लिखा है लेकिन इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। और एक और संदेश आया है, इन्होंने लिखा है फ्रॉम पीसी मेलबर्न और इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। सुनील परदेशी जी ने सिडनी से हमें जवाब भेजा है जो कि बिल्कुल सही है। और साथ ही कैनबरा से एक संदेश आया है थीरू जी का, जिन्होंने आज के सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। इसके अलावा हमें पीयूष जी का भी जवाब मिल गया है जो बिल्कुल सही है। सिडनी से भावना जी ने भी आज के सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। और इसके अलावा हमें खूब सारे संदेश फिलहाल आ ही रहे हैं। हेमलता पुरोहित जी लिख रही हैं कि जय श्री कृष्ण, और हमारी पूरी टीम को कह रही हैं वेरी नाइस प्रोग्राम, बता रही हैं कि आज का जो कार्यक्रम है उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सरनजीत जी का संदेश हमें आया है एडिलेड से, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब हम तक भेज दिया है। तो आप सभी लोगों को आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आज हमने जो अंश चलाया था वॉलंटियरिंग वीक पे, उस पर हमें पीयूष जी का संदेश आया है, लिखते हैं आई एम सर्विंग एज अ वॉलंटियर इन आर कम्युनिटी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एवरी संडे एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड I get lots of satisfaction to help and assist community members requiring assistance. तो देखिए कितनी बढ़िया बात है, पीयूष जी ने अपना अनुभव वॉलंटियरिंग का हमारे साथ साझा किया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे और संदेश भी आए हैं जिनका जवाब गलत है लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए इन्जॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस सवाल का सही जवाब हमें नितिन जी ने भी दिया है मेलबर्न से, और इसके अलावा कुछ और संदेश आए हैं। राजेंद्र बोहरा जी ने भी क्रेगी बर्न से आज के सवाल का जो जवाब है वो हम तक पहुंचा दिया है, और कुछ गलत जवाब भी आए हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपने हमारी इस अनोखी सी पहल में हमारा साथ दिया। चलिए अब जल्दी से 04397997667 पर बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है वो आपको कैसा लग रहा है।

तो दोस्तों इसी के साथ हमें कुमार जी का संदेश आया है, बता रहे हैं कि उन्होंने सिडनी गेम्स में वॉलंटियर किया था और उनका जो अनुभव था वो बहुत ही कमाल का था। तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आज के लिए आप सभी से इजाज़त लेने का समय आ गया है। एक बार फिर से आप सभी का SBS हिंदी के साथ और मेरे यानी भव्या पांडे के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज का जो ये कार्यक्रम था आपको मज़ा आया होगा। खूब सारे गाने और खूब सारे अंश हम आप तक लेकर आए जो कि खूब सारी जानकारी के साथ भरे थे। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सुझाव हम तक 04397997667 पर ज़रूर भेजेंगे और बताएंगे कि आज का जो कार्यक्रम है आपको कैसा लगा।

तो इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नए गानों के साथ, नई खबरों के साथ फिर से वापस आऊंगी, और तब तक आप सुनते रहें SBS हिंदी।

0: SBS South Asian.
1: Australia's destination for everything South Asian.
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

CJ.

After hit. This is SBS South Asian.

कर ले प्यार मेरे नाल कर ले काम सारे हल कर ले मेरे यार तू मेरी बांह फड़ ले आंखें ये आ पढ़ ले सी

तरह सुकून मिला है जब उस तरह मेरी बात हो है। हजार रात में वह भी एक रात हो है। आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हो है। वह एक पल भी पूरी कायनात हो है।

0: ते लड़ाई एनिक तू वेलिया
1: उपसी फिर होगी मिस्टेक बट तू जान दिया मेरा लव नहीं यू फेक लव मैं तो सोना लबे जे तू मैनू छड़े पै जाने बवाड़े फिर हो जू ओदी हड्डी ब्रेक

खर्चा अफोर्ड कैसे करेंगे। नेहा जले जले लगे जाना गले गले, एक से तो दो ही वाले, आजा कहीं चले चले।

Your news from here and hits from home. SBS South Asian.

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

क्या खुद को खुदा मानते हो? क्या खुद को खुदा मानते हो? हमें मार तो दिया, पर एक शायर को मारने की सजा जानते हो?

बड़े कमबख्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो, बड़े कमबख्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो। अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते हो, कि आप खुदा

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: Hello. A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more? The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS Audio app
1: and SBS On Demand.
3: बहुत गौर से सुनिए आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक अतरंगी भूत की कहानी। सुनेगी आप ऐसे नामों के पीछे खड़ी है ये भूत।

0: मैंने सबको पीटा
1: भगा भगा के।
0: आपके लिए आए स्पेशली।
1: हाजी हाजी।
0: कर्मा और रफ्तार, ये गाना उनके लिए है जो मेरे साथ स्कूल में थे।
1: कैसे भाइयों?
0: और उनके लिए जो अभी भी स्कूल में है।
1: बड़ो और बड़ो।

वो जा रहा है कोई शब्द वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास तुम क्या गए के रूठ गए दिन बाहर।